Tulasi, it says like, it will be purified your body. And spiritually, you will go in heaven. Sivaloka, Vaikuntha. So that's why in the death time, many people in India, in other places, they collect some wood, little bit Tulasi, little bit that Panchapallav is. People, marne ke samay mein kya hai ki thodi si bhi people ke ped lakdi aur tulsi ki lakdi saath mein rakh lo aur chita mein koi bhi kisi ka bhi chita people ka lakdi se tulsi ka lakdi se usme kuskas rakh ke usko chita jo chita dahan hota hai to wo Vaikunth lok jata hai to wo to spiritually hai. If you don't believe, agar aapko vishwas nahi hai तो क्या है कि जहाँ पे पीपल को जो बॉन होने से जो हवा आता है तुलसी से और कुश से, उससे वायुमंडल को साफ रख देता है, वो गंध को दूर कर देता है, इसलिए वायुमंडल का कीटाणु नुकसान कर देता है और ओजन लेयर को भी टाल देता है. इसलिए पीपल के ट्री बहुत अच्छा है, हवन के लिए संविदा बना देता है. जय बोलिए पीपल भगवान की जय. सो दिस इज द वंडरफुल स्टोरी दैट यू कैन एक्सपेरिमेंट. इवन you go and if you have the measurement of the oxygen, that has been done many times in Australia also did. So if you take that level of oxygen near close to the peepal tree or basil tree, the tulsi ke nazdik jaake check kare, so you will get the high temperature, high level. So that's why always tulsi is beautiful and then people is beautiful. So it says no matter whatever story is connected, but that is a wonderful gift from this universe, for the universe. So meditating under the banyan tree and bringing the kush grass in your flower pot and planting the tulasi kush grass is wonderful. That's why our saint and rishi munis, they add that every prayer you need to have leaf of the tulasi, leaf of the peepal and kush grass. That's a compulsory. So we don't, if we don't find, that's okay. But if we have that one, that's a wonderful, perfect prayer. So in the kalasa also, that we put that, if you see that in the kalasa, there is a 7 leaf. If we don't find the 7, we'll put the 5. So in the 5 leaf, that is also Panchapallav. Mango and peepal and aak and chaap. So tulsi, everything goes there. So that's why the leaf is connected with Ayurveda and therapeutically, which is wonderful. And so that's why when this value goes to the Western world and there is expensive, in you might came from the Japan, in Australia and some other country, Canada, nowadays the gardener, they are growing the peepal tree, banyan tree, and which is very expensive tree. It takes 1,000 to 2,000 for one plant. So what a valuable now, isn't it? So better you can go and darshan here. You are India. While you are in India, you can see and feel the that's a tree, the peepal tree. Jai boliye Narayan Bhagwan ki jai. Isliye people ke rukh mein dhyan karne se, people ke rukh ke niche baith ke dhyan karne se, swas prashasan mein aashwasan to yahi hai. Aur people ke kya hai, people mein Brahma Vishnu Mahesh ka bhi vas hai. Isliye people ke vriksh ke niche Buddha Bhagwan, jo Nepal mein janma hua tha unka, unki unhone bhi ध्यान किया, ध्यानस्थ करके उसी बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्ञा प्राप्त किया. कब प्राप्त किया? वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में. वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में जन्म, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में महानिर्माण और वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में ज्ञान प्राप्ति होने वाला ऋषि मुनि वही थे कि जो नेपाल के गौतम बुद्ध जो बोध गया में आए, आकर मेडिटेशन किया था. तो ऐसे करके रामतीर्थ स्वामी भी वही पूर्णिमा के दिन में ही उनको जन्म हुआ था, पूर्णिमा के दिन में ही उनका मृत्यु हुआ था. इसलिए कि वैशाख पूर्णिमा वैसे भी अस्पृश्य से, उसमें भी जो पीपल के वृक्ष के नीचे आप कोई भी काम करे तो होता है. इसलिए फिर दूसरा चीज है, जब भी शनि संकटा का जो आपको समस्या है, तो ज्योतिष विज्ञान भी वही आपको शिकायत करता है कि शनिवार के दिन में जाके पीपल के पेड़ में पानी गिराओ. तो पानी के कमी होने से वो आपको धर्म नहीं होता है, ऐसा नहीं है. जब आप सुबह शनिवार के दिन में पीपल के वृक्ष के नीचे जाएंगे तो आपको सारा नेगेटिविटी हो, स्ट्रेस हो, और जो प्लैनेट से आया हुआ कोई भी नेगेटिव वाइब हो, दूर हो जाता है और आपको अच्छे ऑक्सीजन मिल जाता है. इसीलिए आपको ग्रह पीड़ा से आप मुक्त हो जाते हैं. जय बोलिए पीपल भगवान की. So it is saying that in astrology also, if you are suffering some planetary

0: Bombole, Sri Sri Dipnara, Bhagwan ki jai, Sri Sri Deva Purisha Mahadeva ki jai, Sri Sri Madhav Krishna Bhagwan ki jai, Vishwa Guru Mahamandaleshwar Paramhansri Swami Maheshwarananji Guru Deva ki jai.
1: Jai Bole Bhoye Baba ki. So in Shiva Puran, whatever talks, the Sustani Puran also the same thing as I mentioned before. It teaches us how we can remain all the time in a deep spiritual value. The life is very short and we came in this universe that for a short life. So it is saying that in sky, whatever light gives by the star, that much wide place it can see. That's why in our life also, whatever divine divinity or purity we can maintain, that much purity we can carry with us. So every stories, every philosophy, every that the information teaches us these things here. So that's why whatever you mean, the change your vision, visuality. To Shiva Puran hamare liye aur sare vedadi ved kya karta hai ki hamare liye jivan kaisa saral banana hai और शिवजी की तरह कैसा रहना है. और शिवजी ने बोला है कि मैं कल्प कल्प में आवश्यकता के अनुसार कभी ब्रह्मा बनके, कभी विष्णु बनके और कभी शिव बनके मैं क्या है कि संसार को चलाता हूँ. तो कभी कभी मेरा भूमिका रहता है ब्रह्मा का, कभी विष्णु का, कभी क्या है तो कभी रहता है शिव का. इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई विभेद नहीं है. और शिव से विष्णु बड़ा, विष्णु से ये बड़ा वो हो ही नहीं सकता. ब्रह्म एक ही है. तो इसलिए ब्रह्म एक है. तो सबसे बड़ा शैव कौन है कि नारायण है, सबसे बड़ा वैष्णव कौन है कि फिर शिव जी है. वो तो हमने बारंबार बोलते ही आया है. सारे शास्त्रों, ऋषि मुनि, संतगण, महात्मा सारे समय समय में उपदेश देते आया है इसके लिए. फिर भी जब संदेह रहता है तो संदेह क्या है कि इस कार्य बिगाड़ देता है. संदेह ही क्या है कि धर्म का नुकसान करने वाला है. तो इसलिए संशय आत्मा विनश्यति ही. तो किसने बोला है? तो भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बोला है कि तो संशय करोगे तो उसमें क्या होता है कि आत्मा द्रवीड हो जाता है, मन बिगड़ जाता है. सो व्हाट एवर यू फॉलो ट्रस्ट, व्हेन यू ट्रस्ट देन डेफिनेटली इट विल हेल्पफुल फॉर यू. इट इज सेइंग दैट वी ऑलवेज सेलिब्रेट हनुमान जयंती, इजंट इट. So Hanuman is a bhakta of Rama. We always celebrate Hanuman Jayanti. But in similarly, Arjun also the very close friends and bhakta also the Krishna. So why we cannot celebrate Arjun Jayanti? Because Hanuman is a devoted person. He never doubt. He never doubt. So he always respect and honor. There was no doubt for him. God exists or not. There is always he believe and trust.

चट्टान में बैठकर श्रवण करने का इसका महत्व अलग रहता है। आप कहीं भी हो तो इसके लिए आप क्या है कि याचना करके आ जाइए, शरीर मन तो पवित्र हो जाता है, जन्म जन्म के पाप भी दूर हो जाता है। तो इसीलिए तो शिव भगवान का दृष्टि उनके पवित्र सोर शब्द से हम इस्तेमाल करते रहे, जुड़ते रहे। जय बलिए सत्य सनातन धर्म की जय।

जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की मात पिता गुरुदेव की ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सो आई टेल यू फर्स्ट दैट व्हेन वी आर हियर प्रैक्टिसिंग ऑल वेरी गुड those who are sitting in the front and other is backside, then they don't know they are looking like this and they are lying doing. To inko dono behno ko ek taraf lagao next time. Kyun aata hai bhai? Aisa hai ki aap ya to yahan se aake bitha do ya wahan se. Aap do baithe ho to piche wo log bhalai yun dekhe na phasa yun kare. जरा बस मैं कहूँ कि अरे सोनी भाई बैठ रहे हैं, मैं तो हमें ठीक है, हमें थोड़े थाने कटे उठाऊँ कभी, आज कल कराऊँ आज तो इसीलिए सत्संग सत सत और संग सत सत क्या क्या है, कितना है, क्या है, कैसा हुआ है, तो वो सत सत उसको कैसा आ जाएगा और नहीं रह जाएगा। सत संग तो कहता है कि संग किसके साथ रहे, संग किसके साथ में रहना है, जो दे आर गुड एंड दे लाइक एवरीथिंग एंड दे आर हेल्पिंग एवरीबॉडी, दैट इज कॉल्ड सत संग। The sat, sat is the good things, bad things, everything. Sat sang, then it is said, please come with me. We stay all together. We all be together like one. Yes. Then it is okay. Otherwise, other sit and like this, do the aage you kare, phir aage bade bade aadmi hota hai na. वो बड़ा बड़े का मतलब वो नहीं कह रहा हूँ, मैं उसका कह रहा हूँ जो थोड़ा छोटो आदमी है नहीं, वो तो बैठो आगे, और मोटो मोटो बैठा आदमी तो वहाँ से आप देख सकते हो। एंड इफ यू नॉट दिस लाइक दैट देन दे आर लुकिंग ऑलवेज दिस साइड, फिर वो करता है ऐसा तो वो कैसा करे, तो फिर वो इधर करे, फिर वो ऐसा करता तो। सो फर्स्ट वी हैव टू लर्न Who should be here first and then second and like this. Then we have all, so this is Sat. Sat kya hai? Wo Sat kahan hai? Wo Sat kahan se aaya hai? Sat keval manushya ke liye nahi hai, janwaron ka bhi hai. Wo bhi aata hai तो उनके बच्चा होता है और वो बड़ा है तो बच्चे को आगे आगे लेकर के बैठती है, छोटे होते हैं ना ऑल चिल्ड्रन, सो तो ऑल पीपल दैट आर एवरीवेयर दे टेल टू देम देयर मदर, यस मदर बट वेयर मेक द चाइल्ड, यस इन माय लाइक दिस इवन दैट Then it is said, yes, this is very good. So child is going front and mother is behind. Taki the children can be with mother very nice and that. And not going out, then what happens is something. So sat, wo satya hota hai. Satya hi sat hai. Satya hi satya hai. Wo hi satya kahal ja gaya hai. तो सत संग, और वो संग किसके है कि सभी के एक साथ, सभी को किस बक बट अदर वन वी विल गो दिस एंड बट गो सिट लाइक दैट। सो व्हेन वी कम यू शुड कम फर्स्ट ऑलरेडी वेयर यू आर सिटिंग, सो वेरी नाइस सत संग। तो सत संग के बारे में एक भजन लगाओ।
एक भजन लगाओ सत्संग का, सत्संगियों की, सत्संगियों की सन है ना भजन अपना बाप जी का है ना, हाँ तो लगाओ तो बेटा बाप जी का माधवानंद जी का है भाई। माधवानंद जी भगवान सारे विश्व में पधारे हुए हैं वो भी, और महाप्रभु जी जब भी इधर उधर जाते हैं तो कितनी जगह, एक आज यहाँ बैठे हैं तो कल वहाँ बैठ गए, वहाँ नहीं तो वो बैठे। तो मेरा देश है ना यहाँ पर, मेरा देश बहुत बड़ा है, यू डोंट नो, सो मैनी कंट्रीज है, मैनी कंट्रीज, बट दे आर सिटी कंट्रीज है, बट अ वेरी बिग वन आर लाइक फिफ्थ इज आवर हमारा। तो इतना वो जो है दैट वॉटसन इज कमिंग फ्रॉम थेट फार फ्रॉम दिस वेर इट इज वॉटर एंड इन वॉटर में देर स्टिल वी आर अवर लैंड इज अवर लैंड वेरी मच यू नो दैट इट वॉज दैट टाइम वेल दिस ऑल द क्रिश्चियंस और दूसरे भी जो है ना दे कम इन साइड एंड दे टॉक द इंडियंस ऑल लाइक दिस सो डोंट गो हो नो स्कूल जाना देना कुछ करना नहीं था ओनली दोज हु आर लर्निंग वेरी पीपल सो दे वेर लाइक डॉक्टर्स एंड दिस और दिस अदरवाइज ऑल पीपल वॉज अभी भी आपको ले रहे हैं अभी भी उनको बराबर नहीं जाने देते हैं है? तो फिर कितना करते करते मोदी जी के नहीं मोदी जी क्या दूसरे तो वहाँ सिफा कितना लटक कर किया या किया वो वहाँ कहाँ पर बैठे रहे लेकिन भगवान की कृपा से ऑल एवरीवन दे brought the already to India. So India ka kitna very big, big, big. I have not seen everything. India itna lamba chada hai, I was not here. I went to other countries. But I see somebody this and that and that. But how many countries have there and all have different language. Many, many, many, many languages here, Bharat mein. Lekin, unhone sab karke Hindu. Hindu bataya. Aur Hindu kahan se? Hindu bahut dur se hai ye. Kya nahi? Hindu kahan ka, kisko kehte hai, batao? Haan. Hai? नहीं संस्कृत में तो है सिंधु हाँ तो सिंधु तक का है हमारा इसमें आया है तो देखा ही नहीं है ना तो अभी हमारे क्या कि इस साल में ऐसे आ गए इन लोगों ने मुसलमान आ गए खूब करा दिया वो है लेकिन वो तो हिंदी मुस्लिम्स जो है मुस्लिम के उनके वो नहीं है कुछ भी बहुत बस है दिखता है उनको और उसके आगे भगवान ही है बस और किसी के ऊपर है ही नहीं और दूसरे कोई भी है क्रिश्चियंस है वो है हिंदुओं है उनके सबका है तो वो जितने मुसलमान हैं तो पहले हमारे हिंदू थे सब हिंदू हैं लेकिन हार्ड टू डू दे मैनी थिंग दिस So, therefore, we know that everything that in my country, and where my country there, when I go to the airport, and then it's everywhere. Yeah. So, I'm coming always with aeroplanes. Yes. And I see there, from that, I see it's our India, Hamara idhar se. So that all my disciples from other countries, they have all understood everything and they practice here all the times and coming. Don't worry, they are not
but we want to come to here. Swamiji have Maheshwaranand. So I said, what do I do to Maheshwaranand? I didn't do anything now. But he is doing it for me. Yes, I did it first. But he said, I told them, but he didn't know. I have done, and what do you, what will do? And so my disciples, that everybody in the whole countries, whole world countries, ki, up they are

0: कम एंड मेड. सो इनका गवर्नमेंट इंडिया में कहते हैं कि महेश्वरानंद है, वो हमने को हिंदुओं को इसको बुलाया है, हुआ है, तो वैसे ही करना चाहिए. और मैंने कभी नहीं कहा इनको कि इन्हें हिंदू करो. मैंने किसी को ना कहा कि हिंदू बोलो, नहीं, आप क्रिश्चियंस को बोलो, आप उसको बोलो आपका, लेकिन बोलो कैसा क्या करो, ये बात है. नहीं तो मैं अगर ये इतना तक नहीं नहीं मैं तो हम मैं तो हम मुसलमानों को इनका नहीं करेंगे वो और मैं रहूँगा तब तो फिर पड़े रहो गई वो तो आगे भी पीछे में. बट नाउ द मैनी पीपल हैव हमारे डिसाइपल्स हियर ऑल दे कम्स दे आर नॉट कमिंग हियर फॉर वर्किंग हियर दे आर कमिंग फॉर महाप्रभु जी के और महाप्रभु जी के महाप्रभु जी देवपुरी जी का वो जो है दैट इज द फर्स्ट. एंड सो माधवानंद जी ही गेंट ही फ्रॉम हिज हाउस ही वेंट आउट. इट वॉज ऑनली लाइक दिस एंड ही बॉट महाप्रभु जी जो है ही केम टू माई विलेज टू माई मदर. And here my was staying in my house, and there was one very nice person in Rupavas me, और वो थोड़ा मतलब ठीक नहीं था तो धीरे धीरे चलते थे. But he was no very great, standing very great. वो महाप्रभु जी के पास आए थे तो वहाँ बिठा दिया कि बैठो और पढ़ाओ. तो बाप जी के वो नहीं थे इतना, छोटा से ही सेम बाप जी महाप्रभु जी. एंड वो आते थे देन घर पे आते थे, फिर वो आते वो बैठते थे. तो माधवानंद जी अवर स्वामी माधवानंद जी बाप जी ने निपला हमारे रूपावास में रखा है. रूपाव में बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे अभी भी है, अच्छा ही है, लेकिन वो थोड़ा अब डब चपड़ गया हो गया यूँ से भी जगह हैं. हाँ लेकिन वो नहीं होगा, वो हो जाएगा, वो अच्छा ही होगा, वो भी अच्छा होगा. और ये हमारे आश्रम में तो ये देखिए कि मेरे रूपावास गांव हैं, तो रूपावास कंट्री इज द जहाँ जहाँ वेर एवर आई एम इन अदर कंट्रीज वेरी मेनी कंट्रीज. तो वेयर आर यू गोइंग टू रूपावास? यस माई नेम इज रूपावास इन द होल वर्ल्ड. 18 गांव वाले रूपा है वो नहीं जाने, लेकिन वो मेरा रूपावास गुजरात वो वगैरह से भी हो, लेकिन हमारे रूपावास. तो वो ठेठ तक जब ही मैं जाता हूँ कि कौन से महेश्वरानंद का है कि कहाँ रूपावास, और वो चल रहा है. अब वो छोटे मोटे लोग हैं उसमें तो कुछ होता ही है ना, और होना ही चाहिए, नहीं तो फिर क्या पता करें है? तो इसीलिए सारे संसार के अंदर मनुष्य है, मनुष्य मनुष्य ही है. अब किसने वो नाम दिया, उसका वो नाम दिया, उसका वो नाम दिया है, सबका नाम दिया कि किसका नाम है, कौन है रे कि मैं मनुष्य हूँ बस. अब हम मनुष्य है तो मैंने कई बार कहा यहाँ से और करा दिया है और करूँगा कि अब हम नहीं कहेंगे कि ये किस जाति का है. जाति हमारी एक भारत की है और वो सभी को उसी को करूँगा मैं, आप देख लेना. हाँ ठीक है, आप मेघवाल हो, गरग से हो, जो भी है सभी हैं, वो है ही है, लेकिन है वो मेरा मनुष्य मेरे देश का. तब देख लेना उसकी आगे में लगा देंगे ऐसा उल्टा आ जाएगा. हाँ है कि नहीं? प्रेमानंद जी ने, हाँ प्रेमानंद जी कहाँ हैं? ये प्रेमानंद जी, अच्छा प्रेमानंद जी तो हमेशा इसका प्रेम, इसका नाम ही प्रेम, प्रेम की बोलो. हाँ तो वो इनका है, प्रेमानंद जी का, प्रेमानंद जी का इतना बहुत गाँव देश है, और देश में गांव बहुत बढ़िया है, और पहाड़ों के ऊपर में भी नीचे सभी जगह है, और इनका मकान या इतना बड़ा है, उसके अंदर में बहुत बड़े उनके उनके माता पिता जी का है। ओके, लेकिन आप देखेंगे इनको, देखेंगे कितना इसका मकान कितने बड़े छुटे हैं, कितने वृक्ष है, अभी भी खूब वृक्ष है प्रेमानंद जी का। तो प्रेमानंद जी आए मेरे पास में, मैं गया था कहीं, तो ये भी आए, एक बार आए, दो गए, फिर वापस आए, और ये प्रेमानंद जी का बहुत प्रेम है, प्रेम की बोलो श्रीदीप नारायण भगवान की
1: जय। श्री मारवानंद जी सदगुरु।

0: मात
1: पिता
0: गुरुदेव की जय,
1: सत्य सनातन
0: धर्म की जय,
1: माधवानंद जी भगवान
0: की जय।
1: ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। हरि ओम।
2: जय की जय।

अलख पुरी सा महादेव परम सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन।

0: विद्दू। And when is this thing, everything is have done, then how that
1: sve je prikazano.
0: Ta ta ta ga di di da da di nam tak ta.
1: Shiva koji kleše.
0: Da. Gdje gdje blag bi, kuda ga gri gri grag. Da do da di ka bdai ta re ge ge ge ge. एक पैर के अंदर में कितना इतना लगा करके दो है निंद का और ये जो इतना जो सा था ना इसको तो है सहम सहशास्त्र
1: वो सहस्र चक्र।

0: भगवान
1: की जय।
0: देवेश्वर महादेव
1: की जय।
0: माधव कृष्ण भगवान
1: की जय।
0: सत्य सनातन धर्म
1: की जय।

मर की आत्मा। श्री दीप नारायण भगवान शिवानंद जी महाराज की, अलकपुरी जी महादेव, देवादिदेव देवेश्वर महादेव की।

0: ईश्वर गुरु महामंद ईश्वर परम श्री स्वामी महेश्वर जी गुरुदेव की जय हो।
1: आप सब भक्तों की जय।
0: महामंद ईश्वर श्री स्वामी अवतार पुरु जी महाराज की जय।
1: एवरीवन स्टे ब्लेस्ड, मच लव फ्रॉम मी,
2: veľa lásky odo mňa.
1: Keep on smiling.
2: Stále sa usmievajte, pokračujte v tom.
1: Be happy.
2: Buďte šťastní.
1: Because life is amazing.
2: Pretože život je úžasný.
1: Life without problems is not amazing.
2: A život bez

0: वासि ओम शलपुरजी महादेव की जय देवाति देव देवेश्वर महादेव की जय श्रीदीप नारायण भगवान की जय हिंदू धर्म सम्राट परमान स्वामी श्री माधवानंदपुर जी सतगुरुदेव भगवान की जय विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमान स्वामी श्री महेश्वर अनंतपुर जी गुरुदेव की जय आज के आनंद की जय सब संत शिवनि महात्माओं की जय माता पिता गुरुदेव की जय हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो आप सब भक्तों की जय
1: महामंडलेश्वर श्री स्वामी अवतारपुरी जी महाराज की जय।

0: जानकी
1: जय,
0: सत्य सनातन धर्म
1: की जय,
0: शुभ रात्रि।
1: स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

प्रदीप नारायण भगवान का जय। गुरु नानक जी महाराजा की जय। प्रदीप नारायण भगवान की जय।

दीप नारायण भगवान की जय। श्री माधव जी महाराज की जय। परम स्वामी महाश्वरान जी गुरुदेव की जय।

that you are not like that. So we have got that great vision, great aim. So our life will be successful. So there is something, some reason. That's why I came here. And in the same time, they were discussing and Brahma appeared. And Brahma said, oh, why you are debating? There was already fixed. So you're supposed to marry. And Sankara would accept. Okay, we'll do the Gandharva Vivaha then. So Gandharva Vivaha, there are the variety of the Vivaha. The marriage is normally, it explains 8 types of marriage in different scripture. The aiming is the Brahma Vivaha. Is the Brahma Vivaha is you go to the girl's father's house and you ask and father's comes and they do the swayambar, kanyadan. So that is the Brahma Vivaha. And similarly, Kumbha Vivaha, Gandharva Vivaha, and Naga Vivaha. So there is a variety of the marriage types. And Shankarachar wants to do the Gandharva Vivaha. Gandharva Vivaha is dancing and also doing the attraction, but not in a big volume. So it's like love marriage in nowadays. So he wanted to do that. And she accepted. They get married. And after marriage, both you were yogi. So when you have got the same energy, both you are yogi, there will be no fight. Evening, oh, I want to do meditation. And he will not say, oh, no, this time for dinner. Or she will not say, oh, no, this is time dinner. Because both are meditative. They sit together and meditate jointly. That's why it is saying that whatever you do for spirituality, it's better to do together. So there will not be conflict. So you meditate together, you yoga, doing yoga. So sometimes you do partner yoga as well. And sometimes you meditate together, you go retreat, pilgrimage together, and nice bond. And you're living for a purpose, not for physically or not for just maintaining your housewife or house life. So you're going together. So Shankarachar and Tulasi also married now in this point. Shankarachar ko vardaan tha ki Shankarachar aap bahut balshali hai, to aapko kya hoga ki ek Tulasi ke saath mein vivah hoga. Tulasi bahut sare dharma yogini hogi aur Tulasi bahut hi धर्मात्मा रहेगी तो आपके लिए भी बहुत सुहाग देने वाली रहेगी और पत्नी परायण और पति परायण होकर आप दोनों को शक्ति बहुत बढ़ेगा. तो ब्रह्मा जी का ये आशीर्वाद था. इसलिए क्या है कि पति पत्नी का जो होता है, जो लिखा होता है वही रहता है. इसलिए जो विवाह क्या है कि स्वर्ग में इसको फैसला हो जाता है और धरती में आके ये मनाते हैं. तो इसलिए क्या है कि शंखचूड़ भी वो पता करके ब्रह्मा के आशीर्वाद लेकर वो चला गया. गया तुलसी ध्यानस्थ थी. जब तुलसी ध्यान करके रही थी तो शंखचूड़ गया और शंखचूड़ ने परीक्षा किया तुलसी को. तुलसी, मैं सुंदर हूँ, मैं हैंडसम हूँ, आइए विवाह कर लीजिए. लेकिन तुलसी ने भी परीक्षा किया, मैं ऐसे ही आकर्षित होने वाला पुरुष के साथ में नहीं रहूंगा. क्योंकि पुरुष पहले क्या है कि बहुत नरम होते हैं, आकर्षित होते हैं लड़की के, बाद में छोड़ देते हैं. इसलिए मैं तो कभी आकर्षित नहीं होता हूँ. तो उसने बोला, तो फिर शंखचूड़ ने, मेरे लिए भी ऐसा लड़की नहीं चाहिए, पहले आकर्षण होती है बाद में छोड़ देती है. तो इसलिए वो दोनों को बात विवाद हो रहा था. इसी समय में ब्रह्मा जी आ गए. ब्रह्मा जी ने बोला कि आप दोनों को पहले ही निर्धारित है विवाह, इसलिए आप विवाह कर लीजिए. तो दोनों ने क्या किया कि गंधर्व विवाह कर लिया और सुख शैल में रहे. और जो तुलसी और शंखचूड नाम का दानव का विवाह हो गया और धूमधाम साथ विवाह होने के बाद में वो लोग आपस में बैठते रहे. और तुलसी योगिनी धर्मपारायण थी, इस कारण से उसका जो दानव का बल भी बहुत बढ़ गया. एक तो पति पत्नी व्रता का धर्म, दूसरा क्या है कि उसके साथ में कृष्ण का कवच था. दोनों करके बहुत बलशाली दानव हो गया. तो उसने धीरे धीरे धीरे तीनों लोक में शासन करने लगा. देवता, दानव सब लोग क्या है कि त्राहिमाम होने लगे. तो उसका कोई भूखा नहीं था, कोई नंगा नहीं था, क्योंकि वो धार्मिक दानव था. लेकिन देवता लोग को स्वर्ग से उसने खेदा और देवता लोग दुखी थे, बाकी सब लोग सुखी थे. इसीलिए क्या है कि पति पत्नी बीच को अगर संबंध अच्छा हो जाता है तो दुनिया में कोई भी नहीं हिला सकते हैं. इसीलिए क्या है कि पहले पति पत्नी को सुंदरता किसमें रहता है, तो उनको एक आपस के संबंध में है. जब संबंध बन जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा. इसीलिए बोलते हैं कि पति अभी के जमाने में तो कैसा है कि पहले शादी के समय लेकर आओ तो शादी के पहले साल क्या होता है कि पति थोड़ा बोलता रहता है, पत्नी सुनती रहती है. और शादी के दूसरा साल क्या होता है, पत्नी का पावर बढ़ जाता है और पत्नी बोलती रहती है और पति सुनता रहता है. फिर तीसरा साल क्या होता है, पति पत्नी लड़ाई करते हैं और पड़ोसी सुनते रहता है. इसीलिए क्या है कि अभी के समाज में तो पति पत्नी बीच बहुत समस्या

door in your flower plant that is continuously for free, without ambulance, without doctors, without anything. She's going to give you free that tulasi is oxygen. And that herbs is useful for your anything, for fever, for tonsillitis, for back pain, for any difficulties, even cancer. It shows like antibiotic there, antifungi or antibacterial tulasi. If you put in tea, there is tulsi tea as well. If you wear tulasi mala, that also helps your blood pressure. If you put always 2 pieces of tulasi, that removes the bacteria and helps you. The tulasi is the amazing herbs. When you know this one, so no matter in this world, tulasi doesn't choose any caste, culture, group, nationality or gender. It is for everyone, everywhere. It is helpful. So you can utilize this is and tulasi's mahima. And Jai Bali Siyavara Ramachandra ki, Jai Vishnu Bhagwan ki, Jai. जब शंखचूड़ को जब से शंखचूड़ का बल बहुत बल गया, बड़ा था, क्योंकि पत्नी व्रत धर्म से, तब क्या हो गया कि विष्णु भगवान छल करने के लिए गए. जब विष्णु भगवान ने जो कृष्ण कवच छीन लिया वृद्ध ब्राह्मण बन के, उसके बाद में अपति बनकर घर में चले गए और दानव शंखचूड़ के भेष धारण करके तुलसी के घर में चले गए. तुलसी के घर में चल के तो तुलसी आ गई कि उनके स्वागत करने के लिए. विष्णु भगवान के उसने तो नहीं देखा, उसने तो सोचा कि हमारे पति आ गए, पति आ गए. तो भूले वाली तुलसी ने क्या किया, पति आ गए समझ के उसको सलाम कर लिया, पाँव धो लिया, घर में लेकर गया, खाना दे दिया. रात में फिर रतिक्रीड़ा किया और रतिक्रिया करने के बाद में जो पति व्रता धर्म है पत्नी का नष्ट हो गया. इसलिए कोई भी विवाहित नारी तो अपने पति छोड़ के किसी के साथ में रहती है तो उसका पति व्रता धर्म नष्ट हो जाता है. ऐसे करके अगर पति भी कहीं किसी को संबंध रखता है अपने पत्नी होकर भी, तो उसका भी पत्नी व्रत धर्म नष्ट हो जाता है. तो इस दुनिया में पति व्रत धर्म और पत्नी धर्म सबसे शक्तिशाली है. जो विष्णु भगवान और लक्ष्मी और जो पार्वती और शिव, और ये आप देख सकते हैं शंखचूड़ और तुलसी में भी, जब इनका पत्नी व्रत धर्म, जो पति व्रत धर्म नष्ट हो गया, तो शंखचूड़ दानव भी कमजोर होने लगा. जय बोलिए भगवान नारायण की जय. तो इसका अर्थ क्या है कि जब आपको घर में पति पत्नी के बीच मेल है, तो दुनिया कोई नहीं बिगाड़ सकता है आपको, ना तो पड़ोसी बिगाड़ सकता है, ना तो भाई, नहीं तो कोई. जब पति पत्नी में कलह पैदा हो गया तो शक्ति छीन लेता है, तो घर फिर टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है. और जितने भी आप देखावटी के लिए पति पत्नी हो जाते हैं, और पति के दुश्मन पत्नी ही हो जाती है. तो इसीलिए बोलते हैं कि एक आदमी ने पूछा कि पत्नी और दुश्मन में क्या फर्क है, तो वो आदमी ने बताया कि दुश्मन दूर में रहता है और पत्नी साथ में सोती है, लेकिन दोनों दुश्मन है. तो मतलब जिसको साथ में प्यार नहीं है, अच्छा नहीं है, तो ये शत्रु के रहता होता है. इसीलिए क्या है कि जब मिलन होता है वो शक्ति बन जाता है. तो विष्णु ने भी वो शक्ति छीन लिया तुलसी को. तुलसी बहुत गुस्सा में आ गई जब पता चला कि ये विष्णु तो छल करके मेरा धर्म को लूटने के लिए आया, तो आप ऐसा पाप करने के लिए आया तो मैं श्राप देता हूं. तो उसने श्राप देने से पहले विष्णु ने बोला कि तुलसी, इससे उपाय कुछ भी नहीं था, क्योंकि आपके पति दानव ने सारे संसार में क्या किया कि परास्त कर दिया, देवता के लिए कुछ जगह ही नहीं है. इसलिए क्या है कि मैंने ऐसा करना पड़ा, माफ दीजिए. तो तुलसी ने क्या किया, श्राप कर दिया, श्राप दे दिया. श्राप देने के बाद में क्या श्राप दिया, पाषाण होके रहना पड़े. दैट मीन्स तो यू नीड टू बी ए स्टोन, तो आप पत्थर होकर रहना पड़े. तो पत्थर होकर रहे तो उसी के श्राप से विष्णु भगवान शालिग्राम होकर रहे. इसलिए शालिग्राम को हम क्या है कि विष्णु भगवान के प्रतीक माना जाता है. तो उसी समय में जब श्राप देते समय में शिव जी आ गए और भोले भाले शिव जी ने क्या है तुलसी को समझाया, तुलसी ये आपका कुछ भी दोष नहीं था, लेकिन क्या है कि धर्म रक्षा के लिए विष्णु ने भी ये किया है. इसलिए आप अब क्या करो कि कहीं कोई परपुरुष से जाने से शरीर क्या है कि अपवित्र होता है, लेकिन मन नहीं हो सकता है. आपको मन नहीं था, आपको मन से नहीं किया है, इसलिए क्षम्य है. इसलिए कभी कभी क्या होता है तो गुंडे लोग आके रेप कर देते हैं, उसका मन नहीं रहता है, लेकिन शरीर तो अपवित्र हो गया लेकिन मन नहीं रहता है. तो मन को हम माना जाता है, स्वीकार कर लेते हैं. तो फिर
भगवान भोले ने भी वही किया कि आपका शरीर त्याग कर दो, उसने शरीर त्याग कर दिया। वही त्यागा हुआ शरीर गंडकी बनकर बग रही है। अभी सत्य युग से अभी तक गंडकी वही तुलसी का शरीर था, और गंडकी में ही शालिग्राम मिलता है। गंडकी नेपाल में पड़ता है, नेपाल के पोखरा के नजदीक मुक्ति क्षेत्र धाम है, वही धाम से गंडकी नदी बहती है। वो गंडकी के शिविर में

शालिग्राम मिल जाता है। और शालिग्राम के अंदर में आप तोड़ के देखो तो वहां पे चक्र, सुदर्शन चक्र दिखाई देता है विष्णु का। इसीलिए ये कोई बनी बनाओ बात नहीं है, आप खुद जाके अभी देख सकते हैं। कलिकाल में कलिकाल का देवता साक्षात आप देख सकते हैं शालिग्राम को, और शालिग्राम के अंदर चक्र देख सकते हैं। अगर कोई भी शालिग्राम आने वाला नदी गंडकी में जाके, नेपाल के गंडकी में जाके स्नान करेगा तो वो पुराण में लिखा है आपको 100 योनि तक आपको धर्मात्मा बनकर रहने का आशीर्वाद मिलेगा और को पाप सारा छूट जाएगा। तो इसीलिए उस समय से तुलसी और भगवान विष्णु साथ में रहने लगे, और शिवजी ने बोला था कि तुलसी आप अब संदेह नहीं करो, भगवान विष्णु को स्वीकार करो, आप भी वैकुंठ चलो। और तुलसी ने बोला कि मेरा सारे समय में मेरा पूजा होना चाहिए। चलो ठीक है, वही आशीर्वाद मिला तो आज तक भी हम तुलसी को पूजा करते हैं, विष्णु भगवान के साथ में रखते हैं। और तुलसी आपको खान पान में रखे तो क्या हो जाता है, वो आपको दवाई हो जाता है, आयुर्वेद का औषधि है, दवाई है तुलसी, आपको कैंसर से लेकर सारा रोग को निवारण करता है तुलसी। घर घर में रखे तुलसी ऑक्सीजन देता है, तुलसी आयुर्वर्धक है, तुलसी क्या है कि आरोग्य देता है। इसीलिए तुलसी चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, सिख हो, सबके लिए समान अवसर समान लाभ देता है। तो सबके घर में तुलसी होना चाहिए। तुलसी पूजा करे नहीं करे फिर भी लाभ देती है, पूजा करे तो विष्णु भगवान खुश हो जाते हैं, आपको पाप भी नष्ट हो जाता है, आपको आरोग्य प्राप्त हो जाता है। तो उस दिन से तुलसी और शिव जी साथ में रहने लगे। जय बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। सो वी गोइंग टू चैंट नारायण, कृष्ण भगवान के क्या है, कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से, कृष्ण कवच से, वजह से ये युद्ध में शंखचूड़ दानव नहीं हारा था। अब क्या है, शंखचूड़ दानव हर गया और कृष्ण कवच विष्णु के पास में रह गया। कृष्ण इतने शक्तिशाली पहले भी थे, अभी भी है, और कवच शक्तिशाली है। तो कृष्ण भगवान को जय बोलो, जय बोले कृष्ण भगवान की जय श्री।

की जय। बोलिए राम नारायण की जय। सो स्त्री, इट मीन्स इफ यू गो टू नेपाल डायरेक्टली यू कैन ऑब्जर्व द काली गंडकी एंड सालीग्राम, एंड दैट सालीग्राम इज नाउ इन म्यूजियम ऑफ द लंडन एंड म्यूजियम इन ऑस्ट्रेलिया एंड मेनी कंट्रीज दे आर द एक्सप्लोरिंग एंड इनोवेटिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग एंड इट इज सेइंग दैट व्हेन द ओशन वॉज मूविंग दैट टाइम द प्लेट ऑफ दिस अर्थ वॉज मूविंग दैट टाइम द थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ईयर्स द